episode release 20 September. The day is a Sunday and the year is 2026. So guys, सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते प्रोग्राम में आज की न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज और देखते हैं कि आज की न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉप स्टोरीज शामिल हैं. सो बिल्कुल चलते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते प्रोग्राम में आज की न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज.

सो गाइस कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे. और आजकल जो मौसम है, मौसम में चेंज आई है.

चलें प्रोग्राम में सबसे पहले सवाल शेयर करते हैं कि आज मैंने कौन सा सवाल पूछना है प्रोग्राम में। और पहले सवाल शेयर करते हैं, फिर इसके बाद चलते एक सॉन्ग की जाने। लेकिन सॉन्ग पे जाने से पहले सवाल यह है कि सवाल इंतहाई आसान है। चले देखते हैं कौन सवाल का सही जवाब देता है।

तो सवाल यह है कि हमारे जिस्म में, ठीक है, हमारे जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है, जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हर्फ में लिखा जा सकता है। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हर्फ में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं कौन सवाल का सही जवाब देता है। सवाल अगेन रिपीट कर सकते हो। सवाल यह है कि हमारे जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हर्फ में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैसेज करने के तरीके बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट या क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टाइप कर सकते हैं कैपिटल वर्ड्स में आर ए के के वास्ते अपना नाम, अपने इलाके का नाम और लास्ट में सवाल के जवाब। इंसानी जैसे में वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हर्फ में लिखा जा सकता है। और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 85831 यानी कि 85883 पर।

चले प्रोग्राम में एक सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं, संते प्रोग्राम में एक सॉन्ग और सॉन्ग के बाद वापस आते हैं, सो एंजॉय कर लेते हैं। सॉन्ग पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग है,

गाइस बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग। तो गाइस आपने देखा भी होगा कि हम दूसरों की मुश्किल देखकर खामोश क्यों रहते हैं। ये अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो गाइज आज हमारे मुआशरे का एक अहम मसला यह है कि हम दूसरों को मुश्किल में देखते हैं, उनकी परेशानी महसूस भी करते हैं, लेकिन अक्सर खामोश रहते हैं।

और जरूरतमंद इंसान अकेला ही रह जाता है। गाइस, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों की मुश्किलात इसलिए भी नजरअंदाज करते हैं कि उन्हें डर होता है कि कहीं बाद में कोई मसला इनके लिए न बन जाए। लेकिन हर मदद का मतलब ये नहीं कि हम किसी बड़े खतरे में कूद जाएं। बाज़ औक़ात मदद सिर्फ इतनी होती है कि किसी जरूरतमंद को सही जगह पहुंचा दिया जाए, मुतालिका शख्स को इतला दी जाए, किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस करने में मदद की जाए, या किसी परेशान इंसान की बात चंद मिनट तवज्जो सुन ली जाए। गाइस, ये हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज जो मुश्किल किसी दूसरे इंसान के साथ है, कल वही मुश्किल हमारे साथ भी पेश आ सकती है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हम किसी की मदद करने की पोजीशन में हैं, तो कल हमें भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है। गाइस, एक अच्छा मुआशरा सिर्फ बड़ी इमारतों, बड़ी सड़कों और तरक्की से नहीं बनता, बल्कि उस वक्त बनता है जब लोग एक दूसरे के साथ दुख दर्द को अपना समझते हैं। अगर मोहल्ले में किसी घर में बीमारी है, किसी के घर में माली परेशानी है, किसी बुजुर्ग को सहारा चाहिए या किसी नौजवान को सही रहनुमाई की जरूरत है, तो हमारी थोड़ी सी तवज्जो भी उसके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, मदद हमेशा समझदारी और हिफाजत के साथ करनी चाहिए। अगर कोई खासा हो तो खुद खतरे में जाने के बजाय रेस्क्यू इदारों को इतला देना भी मदद है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो मामला मजीद खराब करने के बजाय मुनासिब और महफूज तरीके से मुतालिका लोगों तक बात पहुंचाना भी जिम्मेदारी है। गाइस, हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि कमजोर का मजाक न उड़ाना, परेशान इंसान को अकेला नहीं छोड़ना और किसी की तकलीफ को तफरी नहीं बनाना, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के मौशी को तश्कील देंगे।

गाइस ये याद रखिएगा, मुआशा लोग क्या कर रहे हैं से नहीं बल्कि मैं क्या कर सकता हूँ से बेहतर बनता है। अगर हर शख्स अपने इर्द गिर्द मौजूदगी से एक जरूरतमंद इंसान के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करे तो बहुत सी मुश्किलात खुद बहुत कम हो सकती है।

सो देखते हैं कौन सवाल का सही जवाब देता है। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और मैसेज करने के तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और दोबारा भी बताते चलो। अपने मोबाइल के राइट या क्लियर ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां भी टाइप कर सकते हैं कैपिटल वर्ड्स में आर ए के के बाद स्पेस अपना नाम, अपने इलाके का नाम और लास्ट में सवाल का जवाब। हमारे जिस्म में वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हरफ में लिखा जा सकता है, और फिर ये मैसेज आप सेंड कर सकते हैं 8583 पर, यानी कि 85-83 पर।

सो गाइस अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर. जंग का खात्मा, अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत सालिसो तक पहुंचा दिए, मोहसिन रज़ाई का ये कहना है. ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने अलजजीरा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि तेहरान और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की शराइत पर मशावरत जारी है, जबकि ईरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का मुंतजर है. मोहसिन रज़ाई के मुताबिक ईरान की जानिब से पेश की गई शराइत में तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी रकम की बहाली और अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है.

चलो गाइस इस प्रोग्राम में एक और सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं, प्रोग्राम में एक और सॉन्ग शामिल करते हैं और इस सॉन्ग के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपके मैसेजेस आए हुए हैं उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा।

वेलकम बैक वंस अगेन गाइस. आजकल एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है. बहुत से लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं. इसके इस्तेमाल की वजह से अमेज़न ने 14,000 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया है. साइंस की तरक्की बाज़ अवकात कमजोर तबका जो रोजगार के लिए मारे मारे पड़ते हैं मसाइल का बायस बन रही हैं. इसका नमूना मसनूई जहान का इस्तेमाल बढ़ने पर अमेज़न के 14,000 मुलाजिमीन फारिग होने से बहुत भी लगाया जा सकता है. दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने आलमी सतह पर अपने कारपोरेट स्टाफ में 14,000 मुलाजिमीन को फारिग करने का ऐलान कर दिया है. ये इकदाम इंतजामी ढांचे को सादा बनाने, ब्यूरोक्रेसी कम करने और मसनूई जहान पर मबनी निजाम के फरोग के लिए किया गया है, क्योंकि ज्यादातर कारोबार मसनूई जहान से ही जुड़ते जा रहे हैं. इसलिए अमेज़न ने भी ये नया फैसला जारी कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न की जानिब से जारी नोट में कहा गया है कि इदारा अब अपने वसाइल को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और ऐसे मनसूबों पर तवज्जो का ख्वाहा है जो कंपनी के मुस्तकबिल को मजबूत और मुसहकम बनाएं. हमारी कोशिश है कि इजाफी इंतजामी सतह को खत्म करके इदारे को ज्यादा तेज और मौसर बनाया जाए ताकि जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन मसनूई सहानत के लिए के जरिए कंपनी को आइंदा दौर के तकाजों के मुताबिक डाला जा सके.

शो बिल्कुल फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो इट्स मी तरहान वेलकम टू द शो तरहान चले थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू तरहान आपने ज्वाइन किया थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट मैसेज जी नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो इट्स मी तरहान अगेन सलाम एंड गुड गुड मॉर्निंग तरहान सवाल का जवाब है बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल राइट आंसर मेरे ख्याल में आज सवाल आसान है क्योंकि जितने भी मैसेजेस आए हैं सब ने तकरीबन सवाल का सही जवाब दिया है चले थैंक यू तरहान बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है आपके नाम में एक सॉन्ग प्ले कर लूंगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना है आपने जी नेक्स्ट मैसेज मेमी सुरुशनी सलाम एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर हान कैसे हो वालेकुम सलाम थैंक यू मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह 16 जवाब हैं और जवाब आई थिंक बिल्कुल सही जवाब आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच मिस सुरुशनी आपने ज्वाइन किया और आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है जी नेक्स्ट इट्स मी तरहान अगेन सलाम एंड गुड गुड मॉर्निंग तरहान हाउ आर यू शो अमेजिंग है सलाम टू ऑल योर फ्रेंड्स चले थैंक यू बहुत शुक्रिया तरहान और आपने जवाब सही दिया है सो बिल्कुल नेक्स्ट मैसेज सलाम एंड गुड मॉर्निंग कैसे हो तारिक भाई माई सलाम टू फरिश्ता सोनिया खान एंड ऑल सिस्टर मनाहिल गुल वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच मनाहिल आपने ज्वाइन किया आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग और आपके सलाम भी पहुंच गए थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी नेक्स्ट माय नेम इज हसनैन माय विलेज इज कलवट अच्छा जी चले थैंक यू हसनैन आपने ज्वाइन किया मेरे ख्याल में आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है तो आपने फर्स्ट टाइम अगर मैसेज किया है तो आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी नेक्स्ट मैसेज सलाम तारिक ब्रदर हाउ आर यू गुड मॉर्निंग आई एम रेडियो अमन साइलेंट लिसनर्स जोहरा वजीर फ्रॉम जमेल आंसर इज आई थिंक बिल्कुल सही जवाब और क्योंकि स्पेलिंग बिल्कुल सही आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और आपने क्लियर भी किया है बिल्कुल सही जवाब सो थैंक यू जोहरा वजीर आपने मैसेज किया और आई थिंक आपने भी फर्स्ट टाइम मैसेज किया है अगर आपने फर्स्ट टाइम मैसेज किया है तो आपको भी प्रोग्राम में वेलकम चले प्रोग्राम में एक सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं और ये सॉन्ग तरहान के लिए है क्योंकि तरहान ने सवाल का सही जवाब दिया है पहला जवाब दिया है

सो एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग, और ये सॉन्ग स्पेशली तरहान के लिए है।

मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी. नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो. हेलो सुपरमैन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? शो इज द बेस्ट. द आंसर इज बिल्कुल सही जवाब. मैं डॉक्टर इजहान फ्रॉम करेक्ट. प्लीज अप्ले ये वाला सॉन्ग. चले मैं ट्राई करता हूँ. बहुत शुक्रिया. जी नेक्स्ट मैसेज तारिक भाई. आज हमारे घर में आज एक कॉम्प्लेक्स मसला है, दुआ करें कि सॉल्व हो जाए. जवाब बिल्कुल सही जवाब. मीन के बिल्कुल सही जवाब. आपका जवाब बिल्कुल ठीक है. मनाहिल ने मैसेज किया है तो अल्लाह करे कि आपके घर में जो भी मसला है या जिसके घर भी जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह करे कि सबके मसाइल हल हो जाए. हमारे दुआ के साथ है. बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने मैसेज किया. अल्लाह ताला सबके मसाइल आसान करे. जी नेक्स्ट सलाम. मैं छोटा नवाब. माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू छोटा नवाब. टाइम भी कम है जी. नेक्स्ट मैसेज तारिक भाई, जो भी राइट आंसर देते हैं वो सब के नेम द सॉन्ग प्ले किया करे, क्योंकि एक ही वक्त पे सब मैसेजेस तो नहीं कर सकते. बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है. सो बिल्कुल आप सब के नाम एक सॉन्ग प्ले करूंगा लास्ट में. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. थैंक यू मनाहिल, आपने मैसेज किया.

0: चले ये सॉन्ग आप सबके नाम और मनाहिल ने गिला किया कि हमारे लिए भी सॉन्ग प्ले किया करें क्योंकि हम भी इस सवाल का सही जवाब देते हैं। चले ये आप सबके नाम जिसने भी सवाल का सही जवाब दिया है आप सबके नाम ये सॉन्ग।
1: ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती।
0: और जी नेक्स्ट सलाम प्यारे भाई मैयशा कैसे हो शुनाइस हैं भाई मैं बीमार हूँ मेरे लिए दुआ करना मैयशा। चले थैंक यू सो मच आयशा आपने मैसेज किया बनु से
1: मेरा नसीब ही
0: आई थिंक बनु से आपने मैसेज किया है सो आपका बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया सो आप कह रही कि मैं बीमार हूँ सो अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे हमारी दुआ आपके साथ है। सो बिल्कुल सवाल मैंने प्रोग्राम में ये पूछा था कि इंसानी जिस्म में कौन सा हिस्सा है सवाल इंतहाई आसान था। आज तकरीबन जितने भी मैसेजेस आए उन सबने सवाल का सही जवाब दिया है तो बिल्कुल प्रोग्राम में मैंने ये सवाल पूछा था कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेजी के सिर्फ एक हरफ में लिखा जा सकता है सो सवाल का एग्जैक्ट जवाब है आंख यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि आई ठीक है सो सवाल का सही जवाब है आई यानी कि आंख। सो अब मुझे दीजिएगा इजाजत आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में 12 से 1 बजे तक आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ सो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं होगी। नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत आप सबका बहुत शुक्रिया जिसने ज्वाइन किया मैसेज के थ्रू और जिसने प्रोग्राम खामोशी से सुना उनका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट शो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: त्रड़ाई माशे में जी दार तो ये जी पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा पर उबरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नकवाशोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सफाई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्किट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर से अपसार उधर ता मिला भी जी
2: द इश्मा एंटी एक्नी ट्यूब द इश्मा सीरम और इश्मा राइस फेस वॉश टूल लजर मशवरावर कोम चितासु टपल टाइम मवेस्ट कवे द छा मखमानी दानी भी दागुन भी अगे द पारा इश्मा प्रोडक्ट यूज के इंशाल्लाह मगबम मुकम्मल

भाई जे राज भाई धे धे से वशे रोता वाला गवा जा जरमलांगे देत त खपाई ए मोर और जाना देत त खपाई लगा तो में लगा वाला पैसे ना बोला किसा टेम दूसरा काम दा है ये सरा जा जरमलांगे हां एंजॉय कवाए और मैसेज मजरदा शामिल हुआ शाह वे सरा जा जरमलांगे एंजॉय के साथ ठीक सुवा।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το οποίο έγινε πότε σαν πάρσι δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε ταρκανά από σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ ο χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα είμαι ζητή μόχο κορτά national ο μάτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε βε χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβη σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملاویشی
1: تار کنا داو تو داپا بانی گلشه اندرون لکی گیرد جان زبه گاله پر شوی مارکیشه دیشما من دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سارو درتا ملاویشی

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

0: ودي هتمشي شفات قسمتي زينبا
1: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करो।

जी बिल्कुल अवर देंगे प्रोग्राम से काल से कला के नंबर बने काल माँ के 09272921292 बने काल के सफर में शुरू समय पर बिल्कुल बेलाशे साइड 09272921292

पर सरल सरल बेसर सरल जिकम निगा ना हिम्मत दौड़ बिल्कुल फरमेश का वो सो जिकम हिम्मत दौड़ वाले जिकम निगा ना फरमेश पे रखी जी जीरो नौ सताईस दो सौ इक्यानवे दो सौ अभियान में कल रहूंदी और सरा सरा जिकम निगा ना मैसेज हर रहूंदी टोलो शामिल साबर और तक ही कहना साबर साबर

0: नचिकल कलावर दिन के लिसनर टोले चिकिमा फॉर्मेशन आ रहा हूँ दी टोलो रोशन मिले जी और साबर और ताकि सही दो साबर में भी ख्वाहिश भी जीरो नो साइज दूसरे कान में दूसरे बयान में बने काला रहा हूँ दी और सरा पंजास त्रियासी बने मैसेज हार रहा हूँ दी टोलो रोशन मिले जी सही दो जी चाकल नौ लगी जी गिलेमा केबल प्रोग्राम श्रृंखला दिया दरता प्लीज ही
1: हमेशा
0: कर्जा आगे पनो मन खुद हमेशा गाने लगा साइदो।

वाह जबरदस्त शो जहान मना अच्छा सलाम अलैकुम एवरीबडी ब्रो शो इज वेरी नाइस सुमैया समा फ्रॉम ब्यूटीफुल लतमर देर जो तमाना सुमैया एंड समा ब्यूटीफुल लतमर नाम से कोले यो जहान मना बेहद बेहद मना अरे फतरा देखो इसी मसूद लला सबिल पर बसई वाले इत्तेफाक हो जे काल में मिला उसे देर जो तमाना शुक्रिया मिला उसे साइदो ओके काल कोशिश का जीरो नो साइज उसे कैन

खान दबी ने ओचे रिफात रख रही क्या ना ओचे मसूद लला मोटुल प्रोग्राम ना और दल खो तुमरा मैसेज ना छ अनवी तो प्रोग्राम के देर में सुजना भी जका जे तय चा खबर डगर ता ना छवे देर जो तमना यो जहान

0: वही इकराम भाई दुआ सलाम में कबूल कही, वालेकुम सलाम फोजिया करक से। वही इकराम भाई जवाब है अल्लाह ताला के नाम कुरान पाक में, अच्छा ये जवाब तो गलत था, दूसरा आपने भिजवाया है कि अल्लाह का नाम 99 दफा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मशहूर 5 नेमा, यही तो बात है ना कि मशहूर मशहूर नहीं सारे सारे किस नामों से और किस किस नामों से मतलब उनको पुकारा गया है, कौन कौन से नामों से खोग नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने नाम मुबारक दिए हुए हैं कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने।
1: कोई अपना नहीं।
0: मरवा दुआ सलाम रली गई हुई अजी से दुआ सलाम में कबूल कई संग मरवा तबियत दिखदे बराबरे डोमेल के सोकम जमा आवाज उरी के ना चाइल्ड गिफ्ट सेंटर सदफ सर अजमा इशमा तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी। खुशनूर दुआ सलाम रली गई द पब बिना वही।

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।

इशारा हुआ था। अचानक कहीं से इशारा हुआ था, वो अगर ना मुखालिफ तो हारा हुआ था। मेरी बेबसी ने तसल्ली से देखा, जो किस्मत में था खेल सारा हुआ था। मेरा वक्त बिगड़ा तो वो मुझ पे बिगड़ा, कि शरबत का लहजा भी खारा हुआ था। सितम है कि अब वो किसी और का है, कि जो सबसे पहले हमारा हुआ था। मुझे दुख है अनवर तो इस बात का है, मुनाफिक कोई दिल को प्यारा हुआ था। निगाह उनकी मजाज थी, वो निगाह उनकी मजाज थी, कभी उठ गई कभी झुक गई, तो रईस हमसे यही हुआ, कभी जी उठे कभी मर गए। वो जो रास्तों पे बिखर गए, वही मंजिलों पे सवर गए, जिन्हें जिंदगी ने रुला दिया, वो तो हंसते हंसते ही मर गए। वो गए जमाने का इश्क था, वो गए जमाने का हिजर था, कभी आप दिल में पजीरते कभी आप दिल से उतर गए, और सुरूर कैफ भी छिन गया, वो मताए जान भी लुट गई, वो सुकून दिल का चला गया, सभी दर्द दिल में ठहर गए, और उसी एक पल में गुजार दी शबे वसल भी शबे हिजर भी। वो जो एक पल के लिए कभी मेरे पास आके गुजर गए, तो रईस हमसे यही हुआ, कभी जी उठे कभी मर गए।